नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 97.7 मेगाहर्ज म बद्रीप्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 छ भाद्र शुक्ल पक्ष सन् 2026 सेप्टेम्बर 12 तारीख भाद्र 27 गते शनिबार परेव 4:57 पल्ला मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पयभरी।

नारायण अब यो बताई नहीं भाई को श्री हरिवंश पुराण हरिवंश प्रभु को यो अध्याय कति कुरा को विस्तार कर सुन समन का आदि भनिकन समन का आदि नाम का 88,000 ईश्वर का प्रति गुरु शुद्ध जी बताने भो सैनी कथा लिया राजा जन्मे जाए वैषम पायन नाम का गुरु ने लिया बताने भो सैनी कथा मार्गण्य नाम का गुरु ने लिया विश्वपितामा लिया बताने भो सैनी कथा लिया हमारा आदरणीय श्रोता महान भाव में लियाईकन ये कथा प्रस्तुत कर लगी राजन अब तस्वीर मौका में लगे तो तस्ता किसम को आडम्ब तस्ता किसम को घमंड कहीं गुण कसैले कहीं जो करते जो घमंड रावण जस्त जो वीर पुरुष अर्थ को घमंड ढल्यो लर तो घमंड ढल्यो अब के करने तो अभी अब तस्त किसम के करकन उतापटी जो हो अर्जुन जस्तो जो वीर पुरुषार्थ को घमंड ढले भादा खेल में ओ प्रभु अर्जुन को घमंड कसरी ढलो तो प्रभु यह क्रा लिया बताइए फिर मूँ राजा जन्मेजयी भनी सके उपरांत वैषम पायन नाम के जो गुरु भन्न कि अब कसरी जो ढल्यो अर्जुन जस्ता वीर पुरुषार्थ को कुछ द्वार का नाम जो शहर में कुने भाग में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे अभी खेल तिनी का जो बच्चा अभी जन्मी जन्मिनी मर्ने जन्मिनी मर्ने जन्मिनी मर्ने अभी खेल यौम मृत्य कर जी जन्मे ती भूसुक मारे त्याद ब्राह्मणी गर्भवती रहे गर्भवती भई सके उपरांत ब्राह्मण ब्राह्मणी बसर त्यां हर एक किसम का जो दुख कारण लगे हे प्रभु लहर तो ये हो तो ईश्वर भी छेन कि कसो हो अत काफ लिना पाइदन अभी खेल जो हो इिहर को जो सेवा हमी पान अभी इिहर को जो हो उतापटी हमी मर्मत लेना पान भि तो अब जन्म उतापटि गर्व में आया जन्म जन्मि साफ छैन उतापटी लाख साफ छैन अभी खेल जुनसुक गर्व भी जो जन्मि अभी खेल उतापटी जो लाख साफ छैन अभी खेल योगे करो अ्राह्मणी गर्भवती अभी खेल यही विलाप कर अर्जुन ब्राह्मण ने जब तस्ता किसम को जो कुछ अर्जुन सब गुण भैई थी तेई मौका में अभी खेल धनुधारी अर्जुन ने भन्न ओहो ये गुरु हेन पीर्ण मनोस् होने कुरा भईसको अभी अब जो गई को कुरा गयो भैया कुरा भो अब जो होने कुरा को जोगा जोगाड़ कर अब यह गर्व बचाईदिने जिम्मा मेरे हो मसरी बचाईदेला भन्न भाई अर्जुन ने यह जन्मिने अवस्था में मैं खबर कर ओहो यो अर्जुन हजर सकूँ तो यह बचाऊ न यो गर्व बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर ब्राह्मणले भन्दाखेरि म त आहा लाग्यो त अब यो गर्व बचाउन यदि मैले सकिनँ भनेदेखि म गाण्डीव धनु रोपिएर मर्छु अथवा चेता बनाएर जलेर मर्छु भनेर भन्ने जो वाचा प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो महाराजहरू ल अब वाचा प्रतिज्ञा जस्तो ठुलो संसारमा केही पनि होइन त्यो वाचामा हार्नु पर्यो भनेदेखि त्यो वाचा हारेको दिन र मरेको दिन एउटै हो त्यसैले गर्दाखेरिमा अनि खेरि वाचा प्रतिज्ञा सकेसम्म कसैले पनि नगर्नु महाराज त्यो वाचा प्रतिज्ञा म छुत हुन पनि सक्छ अनि सक्यो भनेदेखि बडो बर्बादी हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरिमा उहाँले त्यस्ता किसिमको चाहिँ वाचा गर्नुभयो वाचा गरिसकेपछि उपरान्त अब यतापट्टि त्यस्तै भयो त्यति हुँदै हुँदै ल्याउँदाखेरि म त उतापट्टि मास पूर्ण हुँदै गयो ब्राह्मणीको पनि अनि खेरि अब उतापट्टि 3 महिना 4 महिना 5 महिना गर्दै ल्याउँदाखेरि म 10 मास परिपूर्ण भयो 10 मास परिपूर्ण हुनलाई 272 दिन बस्नुपर्छ त्यो बच्चाले गर्भमा महाराज अब के 10 दिन यतै कि 10 दिन उता जान्छ अनि खेरि

आनन्द कन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम छित बोलिए श्री आनन्द कन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय। सपना